0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। तो चले यहां से प्रोग्राम में पहला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में सुनते ही।

0: रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, भजन यात्रा प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11, इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। तो चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सुंदर सा भजन होगा पंडित गजेंद्र शर्मा जी की आवाज में।
1: मेरे सत्संग प्रेमी सज्जनों, अगर निश्चित सुबह और शाम को अगर एक बार भगवान का भजन सुमरण करेगा तो निश्चित रूप से 84 के आवागमन से छूट जाएगा, और इसी भजन में दर्शाया गया है। आइए सुनते हैं।

और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हरिओम शरण जी की आवाज में, हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुन

हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार बुधराम की आवाज में एक सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लेकिन आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा हर सुबह की तरह आज सुबह भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। रविवार का दिन है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर।

बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त भजन यात्रा का प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में

0: उसमें ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना
1: धरती।
0: और सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

दे सब ही सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

का दिन बस पेश किया जा रहा है। सभी को अनहिल फादरदा और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को

ही रहना। ये प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो आज भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को बस स्वागत किया जा रहा है। चले आज जब भी पिता दिवस का दिन है, फादर डे का दिन है, तो आप सभी सुनने वालों के लिए ये खास गाना पेश किया जा रहा है।

jaar keer Doe Paul, 1986 film. उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई पिता दिवस के मौके पर आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चले प्रोग्राम में कृष्ण अवतार फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है। सरिका कपूर की आवाज में गाना को आप सुनते ही रहना। गाना का बोल

गाना जो पेश की गई सरिका कपूर की आवाज में, कृष्ण अवतार फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में अब कई बार ये गाना पेश किया जा रहा है। आज जबकि पिता दिवस का दिन है, फादर डे का दिन है, तो ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। एक ही भूल फिल्म का नाम 1983 का खास फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में कुछ अलग सॉन्ग्स बस पेश किया जा रहा है, इसलिए कि आज पीटर डेविस का दिन है, फादर डाक का दिन है। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पहला हिस्सा की प्रोग्राम में इस घंटे का प्रोग्राम में कुछ गाने पिता दिवस के मौके पर बस पेश किया जाएगी, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: पाया।
1: रेडियो वेस्ट में इसकी सरिये
0: दिल का चैन
1: गाना बस पेश की गई। आज जब भी पिता दिवस का दिन है, फादर डे का दिन, सभी को एक शुभ पिता दिवस बस पेश किया जा रहा है रेडियो वेस्ट में इसका पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज जब भी पिता दिवस का दिन है तो पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में कुछ अलग सॉन्ग्स आपके लिए बस पेश

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए मोहम्मद अजीज और सरिका कपूर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सुनवालू रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में कुछ अलग गाने नगमे बस पेश किया जा रहा है, इसलिए कि आज पिता दिवस का दिन है, फादर डे का दिन है। सभी को अनहेल

fijne vaderdag. एक शुभ पिता दिवस का दिन आप हर एक को बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चलिए अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है सुमन कल्याणपुर और उषा खन्ना के।

0: सुमन कल्याणपुर और उषा खन्ना के आवास में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। स्टूडियो के अंदर काफी तार आते हैं और काफी सुनने वालों भी ऐप कर रहे हैं रेडियो SBS का ऐप पर। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, लेकिन आज के प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पहला हिस्सा के प्रोग्राम में कुछ गाने कुछ नगमे पिता दिवस के मौके पर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो कुछ अलग गाने भी आप सुन रहे हैं। रोहन कपूर प्रोग्राम में।
1: माँ तो माँ है, मगर इस पृथ्वी पर कोई और भी है जिसके

रोहन रोहन कपूर जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज पिता दिवस का दिन है, फादर दख का दिन है, तो कुछ अलग सॉन्ग्स गाने जो है पहला घंटे की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जरूर आप सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ पिता दिवस बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई पिता दिवस के खास मौके पर। चलिए एक गाना एड फिल्म तकदीर, पुरानी फिल्म तकदीर का ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

जीना यहाँ मरना वहाँ, इश्क सिवा जाना कहाँ। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में एक और खास गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश

जी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में ये गाना आप सुनते ही रहना।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: मस्ताना।
1: खास तौर पर आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले काफी प्यार भरे गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर और वो भी खास तौर पर बदलते रिश्ते फिल्म का नाम है। किशोर कुमार और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

कल्याण पूरा और मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आलमगीर और खासतौर पर मेहनाज की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना पाकिस्तानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी नख़्मे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा।

पर नशरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये खास गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले लता मंगेशकर की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अगली बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार प्रोग्राम में।

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का, और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले

और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनवालो रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

इसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शेरू तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर एक गाना जो कुमार सानू के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

कुमार सानू जी की आवाज में दानव उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनवा की सेवा में। सुन वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60। कुमार सानू के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक से एक खूबसूरत गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो वेस्ट में इसके जरिए चले उदित नारायण एनाल का प्रोग्राम में हुगम

इश्क गए मेरा इंतजार करना, अरमान मलिक की आवाज में। जो फिल्म खुदा हाफिज, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर। गाना कबूल है शुक्रिया, सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम।

सभी नमस्कार प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-6611। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

सभी सुनने वालों की सेवा में बसपीस किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और जिस तरह से भी आप चाहे हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और वो भी इंटरनेट के सहारे। और इसी तरह से भी बहुत सी सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं।

कुमार सानू, कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मेरे मेहरबान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम

पास में ये गाना पेश की गई इंसाफ फिल्म का नाम रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना ये खास गाना। एक बार फिर से उदित नारायण होगा प्रोग्राम में, साथ में होगा अलका और फिल्म का नाम इश्क है तुमसे।

में फिल्म का नाम इश्क है तुमसे, इश्क है तुमसे फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई। खूबसूरत नगमे आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, फिल्म नाराज़।

फिल्म का नाम सुनने वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। इसी तार की नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं फरमाइशी के बारे में, आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम के बारे में।

गीत आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। तो चले मिलकर पहला गाना जो पेश किया जा रहा है सागर मलिक की आवाज में पिता दिवस के मौके पर आप सभी सुन वालों के लिए।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसरों बीते गए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। 8:01 स्टूडियो टाइट हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अभी बार एर पिटाई और मुनिक की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। सुन वालों आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम, गर्मी सा मौसम है, लेकिन स्टूडियो के अंदर में काफी ठंडी ठंडी सा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है। हर पिटाई और मुनिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार दविंदर सिंह

ये गाना पेश की गए, गुम है किसी के प्यार में ये दिल सुबह और शाम, मिका सुखू प्रोग्राम में

मीका सुक्खू और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी देखे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, चले अब की बार ये गाना की ओर। 8:08 स्टूडियो टाइम कहो ना प्यार मैशअप प्रोग्राम में।

0: ना प्यार मैशो बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, पिता दिवस का दिन है, फादर डे का दिन है, तो मिका सुकु एक बिल्कुल नया गाना रिलीज किया है फादर डे के मौके पर, पिता दिवस के मौके पर। तो चले मिलकर सुनते हैं
1: रेडियो SBS। वेंचर मोये सोनिगे डग।

पिता दिवस के मौके पर ये बिल्कुल नया गाना जो रिलीज किया गया है मीका सुखू और साथियों की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है, 3 बजे से मत भूलना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है, 3 बजे से मत भूलना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते

और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसरों मीठे की आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो वेस्ट में इसके जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ आशा भोसले मेटली बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आज की इस लोकल गाने का खास प्रोग्राम में। जरूर आप सुनते ही रहना आशा भोसले मेटली।

आशा भोसले मेडली बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 8 मिनट बाकी है 2 बजने में, चले एक आखिरी और आखिरी लोकल गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी लकी सिंह की आवाज में।

सोनू निगम और कृष्णा कली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई परम सुंदरी फिल्म का नाम उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गाना जो अब की बार आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है आज की इस रविवार की खास दोपहर का प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उदित नारायण और मधुश्री की आवाज में ब्लू फिल्म का नाम

और सभी सुन वालों की सेवा में स्टूडियो के अंदर काफी तार आते रहते हैं। बहुत से सुन वालों रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं, देश विदेश से भी। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। पिता दिवस का दिन आप सभी को बधाई हो। 2:10 हो चुका है ऑल इंडिया के अंदर। उदित नारायण एंड अलका कोहली, नंबर 1 फिल्म का नाम।

रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के पास में भी आप सुनते ओपनिंग नंबर। ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से, मैं हूँ आप का खिमुजार ग्लेन। बस सुनते रहना हमारा हिस्सा के प्रोग्राम यहाँ से, ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS, और वो भी शहरी ट्रैक के अंदर से।

कि कहाँ जाते हो अनवर, अनवर हुसैन के आवाज में। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से द माइटी मुकेश के आवाज में। सुन

कि चोरी चोरी जो होना था वो हो गया। सुमन कल्याणपुर और साथ में मनहर उदास के पास में अभी आप सुनते हैं

पंकज उदास के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से के सबको मालूम है कि मैं शराबी नहीं। कुमार सानो और साथ में अलका याग्निक के पास में सुनते रहना आपकी बार मेरा दिल भी कितना पागल। अलका याग्निक साथ में कुमार सानो बेस्ट लिसनिंग बॉलीवुड रेडियो स्टेशन वो भी शहरी ट्रैक के अंदर से।

कुमार सनो के आवाज में भी आप सुनते प्रोग्राम से सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स फरके से फमासी न्यूज और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS

Inmiddels 3 minuten. 3 minuten over 3. 10 bachkaris wachten, 10 minuten guzarahe. Baita Ghana hangama program sunte rehna yahan se over Radio SBS. Wo bhi har ravivar ko shaam mein. हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम

0: हरि द जय राम के पास में सुनते रहना।
1: एक दिन का जिक्र है भाई कि माता पिता ने कर,
0: जबकि आज पिता दिवस है तो
1: शादी के लिए लड़की,
0: पिता दिवस के मौके पर फैन फैन वादरदाग कहा जा रहा है अन अल फादर्स।

के भौजी के अंगना है भारी और तू न जाइये करा खोदे। रविंद्र भोला सिंह के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से के बनी है गोलगप्पा। सविता सिंह सेलेक्टर साथ में साधना लीला के पास में सुनते रहना। अच्छाई कुमार नंदा का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

माल कच कचवा बनी है गोलगप्पा, अक्षय कुमार नंदा का पसंद। तभी आप सुनते हैं

फिर इस छेदी के वाज में भी आप सुनते और अब की बार जब से देख ली सूरत या तो हार गोरिया अल्ता प्रसाद पूरन के वाज में

सुनील राम सुंदर के आवाज में भी आप सुन रहे रशिका दीनदयाल के आवाज में बस

रशिका दीनदयाल के वास में भी आप सुन रहे थे। गिरधारी स्त्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वाइड से राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहना।

विनोद रखन के वास में भी आप सुनते गिरधारी स्त्रात फ्लोइटन फ्लोइटर वाइद से हमारा बीरमान राजन गिरधारी का पसंद अभी आप सुनते।

चार बजकर इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है, 5 मिनट ओवर 4 बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।

के गोरी रतिया के निंदिया चुराए के सीन रामबरन के पास में अभी आप सुनते और अब की बार सुनते रहना रकेश रकेश यन करण के पास में

0: और अब की बार सुनते रहना सुरेश से हीरा के आवाज में
1: कि जब साजनवाई है ना
0: कि सजनवाई है ना
1: साजनवाई है ना कि जब
0: स्टापोस स्टापोस से प्रेम मताओ का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: कि जब सजनवा आइए ना सुरेश हीरा के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से तापोस तापोस से प्रेम मताओ का पसंद अभी आप सुन रहे थे। बेस्ट लिस्निंग बॉलीवुड रेडियो स्टेशन वो भी शहरी ट्रैक के अंदर से रामदेव चैतू के पास में
1: बभना आवे जाए बभना
0: तेनहाक से इसला यांकी की पसंद सुनते रहना।

के बबना आवे जाए। रामदेव चैतू के पास में अभी आप सुन रहे थे पेनाक से हिसला यांकी की पसंद। प्रदीप प्रदीप सिंह सरन के पास में सुनते रहना।

कि तेरी प्यारी सूरतिया पे गोरी, प्रदीप शिव सरन के वास में सुनते रहना। हेदल हेदल से हेन नारायण का पसंद सुनते रहना।

Den Haag से भैया भैया रमोतार की पसंद भैया आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बात सुनते रहना दविंदर सिंह सीवनाथ के आवाज में।

DAB के जरिए ऑनलाइन केंद्र में और साथ में ऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन केंद्र और साथ में दुनिया के हर एक कोने में लोगों हमेशा सुनते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम और साथ में सुनते ही भी जाना

0: के कैसे भरो जमुना गगरे, सुरेश राम प्रसाद के पास में भी आप सुनते हैं लाइव के जरिए टाइम्स ड्राइव में 37 शेयर ट्रैक के अंदर से
1: फरियाद करने वाले
0: बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।
1: मोहब्बत करने वाले गले के हार तुम हो,

रॉबी उदित राम के आवाज में अभी आप सुन रहे थे माता पिता के सेवा करके। विज्ञानवती चैतू के पास में सुनते रहना।

Inmiddels 8 minuten over 5. 5 बजकर इस वक्त 8 मिनट गुजर रहा है. बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो एसबीएस लाइव के जरिए.

0: राजू सिंह गुलाम और साथ में शांति शिवनंदन के आवाज में भी आप सुनते प्रोग्राम से यंग बकाबाना बोरी बकाबाना रमेश चंद्र बिहारी के आवाज में
1: बॉय फ्रेंड बना ओके यंग बकाबाना टेकी बकाबाना यंग बकाबाना टेकी

0: रमेश चंद्र बिहारी के पास में अभी आप सुनते कि आया ये कैसा समाना कि यंग बकबाना बोरी बकबाना।
1: चलो चमन में जाए फूल चुन लाए मैं सदके यार
0: मोती माला भोला सिंह के पास में सुनते रहना। सुसी सुसी जिन्नू की पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: एक बोतल दारू।
1: महेंद्र छेदी के पास में सुनते रहना।
0: ऊपर से कोला भी डाल दे वेंकरी मां ओ मुश्नेसी।

ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर

समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फरकेस इंफॉर्मेशन और उसके बाद में आज आंचलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमतगुजार ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि क्रमलाल, जो उफा हार्ट वेलकम हीट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। विल तू रिएक्शन कर ना तेज, सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 032-65-65-60. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साथ ना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा en is gezongen door Suniti Chauhan en Alka Yachnik. Gaan we dan verder met uit de film Dil Dharakne Do, het liedje Gala Guria.

फिल्म मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी। और अब आप सुनिए, रहना है तेरे दिल में से सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचा कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे द फिल्म अभिमान है हंसा हुंदर लता मंगेशकर। हाँ उदा फेरदर मैथ आर द फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।

0: वो तो
1: क्यूट है ना।
0: अरे पहलवान है
1: पर तुमसे प्यार करती है।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
0: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
0: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

जाऊंगी, तू ही तो है। काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं।